0: प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम राम राम
1: प्रेम मुदित मन से कहो।

हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति।